0: நேயர்கள் கேட்கவிருப்பது சட்டம் மற்றும் நீதி அமைச்சகத்தின் நீதித்துறையால் பிரத்யேகமாக வடிவமைக்கப்பட்டு நிதியுதவி அளிக்கப்படும் நிகழ்ச்சி.
1: We bring you a talk on mental health and access to justice, care and human dignity. This talk was part of a webinar organized by the Department of Justice.
2: जब तक एक इंडिविजुअल ये नहीं समझता कि मुझे मेंटल हेल्थ की इश्यूज हैं, मुझे हॉस्पिटल जाना है या मुझे किसी से कनेक्ट करना है, तब तक नेक्स्ट स्टेप आता ही नहीं है. We do not then talk about what rights he has or what where he can go. जब भी हम अक्सर स्वास्थ्य की बात करते हैं, फिजिकल हेल्थ, whether he is healthy or not, शारीरिक रूप से हम स्वस्थ हैं कि नहीं, and we usually ignore the mental health aspect and the social. So WHO has identified that mental health is integral to health. So when we are talking about mental health, what is mental health? It's a complex process. क्या हम समझ पा रहे हैं मेरे साथ जिंदगी में क्या हो रहा है, लाइफ में कितने सारे पड़ाव पड़ते हैं, आर वी एबल टू कोप अप विद दोस थिंग्स, आर वी प्रोडक्टिव डिस्पाइट हैविंग टू फेस वेरियस चैलेंजेस इन लाइफ. सो इफ वी आर एबल टू डू सो, वी वुड से दैट आई एम मेंटली हेल्दी, आई एम एबल टू डील विद माय मेंटल हेल्थ एडिक्वेटली. देयर आर वेरियस सिचुएशंस इन लाइफ, वेदर इट इज एट वर्क प्लेस, फैमिली, with how we are connecting with other individuals, whether we are facing some legal battle or we are having shortage of funds, someone in the family is ill, or home environment or the school environment or the workplace is having problems. So in sab cheezon ko leke hum some individuals may feel stressful, some individuals may feel that this is part of life. To hamare

एक्शंस अलग अलग होते हैं एंड एट द सेम टाइम वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट सम अमाउंट ऑफ स्ट्रेस इज इम्पॉर्टेंट टू ड्राइव अस टू फेस दोज चैलेंजेस. अगर हमारे पास एक बच्चे के सामने एग्जाम हो ही नहीं तो वो पढ़ेगा ही क्यों. तो एग्जाम एक तरह से उसके लिए स्ट्रेस भी क्रिएट करता है पर दूसरे पर्सपेक्टिव से उसको एक चैलेंज भी मिलता है कि मुझे आगे सीखना है. बट एट द सेम टाइम आफ्टर सर्टन अमाउंट ऑफ स्ट्रेस वी बिकम डिसफंक्शनल. जिसको हम कोप अप नहीं कर पा रहे हैं वो हमारे लिए एंग्जाइटी देता है, घबराहट देता है, एक helplessness की feeling देता है. That is the time when we need to seek help. If we are able to face the stress adequately, we are fine. But if we are not able to face the coping, we are not able to face those challenges, then we start having headache हो रहा है, मुझे बहुत थकान लगती है, मेरे को नींद नहीं आ रही है. So these are some of the signs and commonly reported symptoms, whether they are in the form of physical issues. क्योंकि अक्सर हम मेंटल हेल्थ इश्यूज को भी फिजिकल का नाम देते हैं.

coping, we are not able to face those challenges, then we start having headache हो रहा है, मुझे बहुत थकान लगती है, मेरे को नींद नहीं आ रही है. So these are some of the signs and commonly reported symptoms, whether they are in the form of physical issues, क्योंकि अक्सर हम mental health issues को भी physical का नाम देते हैं. हमें महसूस यही होता है कि हमारे शरीर में थकान है, but actually the cause may be at the mental level. ये कहना कि कब उदासीपन डिप्रेशन मतलब एक क्लिनिकल डिसऑर्डर बन जाता है, एक बीमारी का रूप धारण कर लेता है, बहुत कोई डिमार्केशन नहीं है. जनरली वी से दैट इफ इट इज परसिस्टेंट, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल ऑफ सैडनेस डिप्रेशन व्हिच इज वेरी कॉमन मेंटल डिसऑर्डर एंड इट इज सैडनेस या डिप्रेशन इज कॉमनली यूज्ड वर्ड अमंग द पब्लिक. सो हाउ डू वी रिकॉग्नाइज दीज साइंस? जैसा कि मैंने कहा, सबसे पहले हम शारीरिक कंप्लेंट्स देते हैं, मेरे हेडेक हो रहा है, मेरा मन नहीं कर रहा नहाने का, मेरा को नींद ठीक से नहीं आती, या मुझे भूख बहुत ज्यादा लगती है, या मेरा मन नहीं करता है खाना खाने को. सो दीज आर सम ऑफ द फिजिकल सोमेटिक कंप्लेंट्स दैट इफ वन इज फीलिंग दैट और वन इज रिपोर्टिंग, वी नीड टू टेक इट सीरियसली. सम ऑफ द बिहेवियरल साइंस इंक्लूड, देयर इज अ सडन, पेरेंट्स आके कहते हैं कि कई बार पता नहीं बिना प्रोवोकेशन के, बिना कोई किसी कॉन्टेक्स्ट के इरिटेबल हो जाता है, वापस जवाब देता है, या अननेसेसरीली शॉपिंग आजकल हो रही है, एक्सट्रीम्स ऑफ बिहेवियर व्हिच वाज नॉट देयर अर्लियर. सो एनी चेंज ओवर द टाइम व्हिच इज नॉट देयर, व्हिच इज नॉट एक्सेप्टेबल बाय द फैमिली, दैट मीन्स देयर इज सम दिस बिहेवियर नीड्स टू बी अटेंडेड टू. एट अ सोशल लेवल वी डोंट वॉन्ट टू इंटरैक्ट विद पीपल, वी डोंट वॉन्ट टू रिस्पॉन्ड टू पीपल, रिस्पॉन्ड टू फैमिली मेम्बर्स. छोटी छोटी चीज़ों को लेके हम नर्वस हो जाते हैं, समटाइम्स वी से दैट मुझे लग रहा है कि बस जिंदगी का अंत आ गया है. सो दीज काइंड ऑफ इमोशनल रिस्पॉन्सेज ऑल्सो आर अ मैटर ऑफ कंसर्न एंड may be an indication for mental illness. So, मोटे तौर से अगर हम देखें तो कुछ ऐसे signs होते हैं जो irrespective, they can be, these signs can be due to some physical illness and these can also be signs for some mental illness. हमारे रोज के रोजमर्रा का जो routine है उसमें changes आ रहे हैं, बच्चा school नहीं जाना चाह रहा है, college जाने में छुट्टी अक्सर आ रही है, हम वर्क प्लेस से कोई ना कोई बहाना लेके जल्दी वापस आ जाते हैं, वी आर नॉट ईटिंग वेल, आई गेट अप इन बिटवीन एट नाइट, और देयर इज अ चेंज इन माई इंटरैक्टिव, पहले बहुत ज्यादा सोशलाइजेशन होती थी, अभी मैं मेरा मन नहीं करता है. सो दीज आर ग्रॉस साइंस विच मे बी ड्यू टू एनी रीजन बट दे आर इम्पॉर्टेंट टू बी पेड. सम साइंस आर स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर डिसऑर्डर, ये सब कॉमन बीमारी है, बहुत ज़्यादा चेकिंग होती है, बहुत ज़्यादा लगता है कि बहुत गंदा हूँ तो बार बार नहाते हैं, या बहुत ज़्यादा हाथ हैंड वॉशिंग होती है, तो OCD ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर. बच्चों में अक्सर स्कूल से रेफरल आते हैं कि बच्चे में बहुत ज़्यादा, वो 7th क्लास में पढ़ रहा है पर उसको अभी तक सेंटेंस बनाना नहीं आता, उसकी स्पेलिंग में एरर्स बहुत हैं, या मैथ्स में वो 2nd क्लास का परफॉर्मेंस है, स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर. तारे जमीन पर हम सब ने देखी है एंड दैट इज वन वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट दिस इज अबाउट. मेनी टाइम्स अनलाइक अदर इलनेसेस पीपल डू रिपोर्ट मेरे को बहुत डिप्रेशन रहता है, इट शुड बी टेकन सीरियसली, इट्स अ क्राई फॉर हेल्प दैट आई एम नॉट फीलिंग वेल. अक्सर देखा गया है कि इंडिविजुअल्स हु डू ट्राई टू कमिट सुसाइड, दे डू से, दे वर्बलाइज देयर problems, their helplessness, and they seek help, which we most often in our peer groups we do not recognize. Later on, अरे उसने तो ऐसा कहा था. Sometimes individual report मुझे कुछ सुनाई देता है, हम हंस के उड़ा देते हैं बात को. These may be signs for psychosis. Sometimes we say that बहुत anxiety, बहुत घबराहट हो रही है, तो मुझे लगता है कुछ मिनट को लगा कि मेरा तो अंत आ गया. It may be a panic attack. So we need to seek help rather than face that mera log mazak udayenge to main nahi jata hu dikhane. At times if it is possible to teachers setting mein ya parents jo educated hain, we have small self administered questionnaire which can actually tell you ki ye is
10 आइटम्स में से इतना कट ऑफ दो के ऊपर है।

0: 102.6 ये देश का नंबर वन रेडियो, आपका अपना रेनबो, और यहाँ पर प्रोग्राम शुरू हो गया है आपका और हमारा फेवरेट शो, वीकली शो संदेश टू सोल्जर्स। और संदेश टू सोल्जर्स के आज के इस खास एपिसोड के साथ हाजिर है शाहिद, और आज के हमारे खास मेहमान हैं मेजर मानिक एम जोली, सेना मेडल से सम्मानित रिटायर्ड ऑफिसर हैं, इंडियन आर्मी के वेटरन हैं, गोरखा राइफल्स और मिलिट्री इंटेलिजेंस इनका एक्सपीरियंस है, फील्ड कमांडर, कॉर्बेट इनोवेटर एंड मास कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजिस्ट, फाउंडर हैं नेत्रम डिफेंस रिव्यू के मेजर मानिक एम जोली। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी रेनबो पर संदेश टू सोल्जर्स में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद शाहिद, बहुत अच्छा लगा आपसे आज फाइनली बात करके।
0: जी सर, हमें भी बहुत बहुत हम आपके शुक्रगुजार हैं, और सर आपने अपना समय निकाला, कीमती समय आपने निकाला है और आप आए हैं हमारे स्टूडियो में। सर बहुत बहुत आपका एक बार फिर से स्वागत हम करना चाहेंगे, और जैसा कि हमने आपको आपके बारे में सर थोड़ा सा बताया है, तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है, लेकिन जो बातचीत अभी इंटरव्यू से पहले आपसे चल रही थी तो उसमें मुझे बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें आपके साथ पता लगी, और लग रहा है कि ये शो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो सर हमें सबसे पहले तो ये बताएं कि जिस तरीके से ये शुरुआत होती है एक आर्मी ऑफिसर बनने की तरफ, जो एक एक यंग कैडेट जाता है, तो वो कैसा एक्सपीरियंस होता है और क्या महसूस करता है, वो क्या जोश, वो जज्बा, वो नेशन और एक देश के लिए एक जज्बा होता है जब जाते हैं?
1: तो शायद सब सबके अपने अपने रीजंस होते हैं आर्मी ज्वाइन करने के, लेकिन एक कॉन्स्टेंट फिक्स रीजन सबका ये होता है कि हर फौजी का अपने देश के प्रति सर्विस करने का, माँ भारती के लिए सेवा करने का एक पक्का जज्बा फिक्स रहता है। बाकी सब एक्सक्यूज हैं, पर आप कभी भी ये नहीं पाएंगे कि एक फौजी इससे हट के जवाब दे कि हाँ मैं देश की सेवा नहीं करना चाहता था, कोई और कारण था।
0: जी
1: तो ये हमारा कॉन्स्टेंट है। तो मैं भी बचपन में, मेरे नाना जी भी आर्मी में थे,
0: अच्छा,
1: तो मेरी माँ ने बचपन से ही मुझे यही कहा था तुमने फौज में ही जाना है,
0: यानी कि ऑलरेडी आपको जो है ग्राउंड बना हुआ मिल गया था, बस तो, आपने उस पर या तो अपना सफर शुरू किया।
1: यस, जैसे मैंने 6th, 7th, 8th क्लास के दौरान
0: जी
1: तैयारी शुरू करी एनडीए की, तो 12th खत्म होने से पहले मैंने एनडीए क्लियर कर लिया था, तो स्कूल के एकदम बाद फिर मैं एनडीए चला गया। मैं रोहतक का रहने वाला हूँ
0: जी,
1: तो वहां से मेरी क्लास से हम 5 गए थे, तो वो शहर में भी थोड़ा इट हैज द वर्ल्ड रिकॉर्ड, रोहतक सिटी का रिकॉर्ड है मैक्सिमम ऑफिसर्स प्रोड्यूस करने का
0: हरियाणा।
1: तो बस हमारे यहाँ काफी ट्रेंड होता है आर्मी में जाने का, आर्मी नेवी एयरफोर्स मतलब।
0: जी सर, आपने मेजर मानिक एम जोली हमारे साथ जो सेना मेडल से सम्मानित हैं, सर इस पर हम बात करेंगे कि किस तरह से आपको सेना मेडल से सम्मानित किया गया और दूसरे अवार्ड भी आपको प्रदान किए गए हैं, साथ ही आपको पीएम मोदी का मिशन इनोवेशन नेशनल चैंपियन का भी अवार्ड दिया गया। उसके अलावा ऐसे बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं आपकी जिसमें आपके पूरे करियर में लगातार कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ आप हासिल करते रहे अपनी डेडिकेशन से, अपनी मेहनत से, अपने जज्बे से। उसके अलावा हम और भी और चीज़ हैं जो हमें आपके बारे में पता लगी हैं, क्योंकि आप कमीशन हुए थे गोरखा रेजिमेंट में 1999 में, फिर उसके बाद आपने मिलिट्री इंटेलिजेंस में काम किया और आपने 10 साल आपने वहां पर अपनी सर्विसेज प्रदान की, और काउंटर इंटेलिजेंस एंड स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट के तौर पर।
1: हाँ जी,
0: तो ये बहुत ही एक ना वैरायटी वाला और बहुत ही अलग अलग तरह के आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं, एक आर्मी ऑफिसर, फिर उसके बाद आपने जम्मू कश्मीर में काफी लंबा समय दिया है, सर्व किया है आपने।
1: हाँ जी,
0: और जिस टाइम पर आप कमीशन हुए उस टाइम पर कारगिल वॉर का मेरे ख्याल से टाइम था।
1: बिल्कुल, हम जब कमीशन हुए 99 जून में, कारगिल वॉर चल रहा था।
0: अच्छा,
1: तो जब हमारी कमिशनिंग परेड थी हम सारे बहुत एक्साइटेड थे कि अब लड़ाई में जाने,
0: हम भी जाएंगे। अच्छा,
1: मुझे याद है कि स्टार न्यूज ने एक रिपोर्टर जर्नलिस्ट को भेजा था हमें इंटरव्यू करने के लिए।
0: ओके,
1: और जो जो लड़के इन्फेंट्री में गए थे, जो वहां पे लड़ाई के लिए जा रहे थे, यूनिट्स थी, तो उनका उन्होंने हमारा अलग से इंटरव्यू लिया था। अच्छा, कि आप लोग लड़ाई में जा रहे हैं, कैसा लग रहा है।

0: तुम सारों का एक ही जवाब था, बहुत एक्साइटेड है, जल्दी भेजिए. लेकिन लेकिन जब तक हम कमीशन हुए, एक्चुअली सीज फायर अनाउंस हो गया.
1: अच्छा,
0: तो ये हम अपना, ठीक है, देश के लिए युद्ध ना होना एक तरह का अच्छी, लेकिन पर्सनली आपस में ये है कि हम अपना दुर्भाग्य मानते हैं कि मैं उस लड़ाई में लड़ने का मौका नहीं मिला.
1: मतलब एक फौजी है और वो चाहता है कि मैं किसी तरह से मैं लड़ाई का हिस्सा बनूं.
0: इससे बड़ा टेस्ट क्या है हमारे लिए कि लड़ाई में लड़ने का मौका मिले.
1: बिल्कुल.
0: तो वो यूं लगा लीजिए 2-3 हफ्ते से हम मिस कर गए थे.
1: अच्छा. और सर ये भी है कि उस कारगिल वॉर में जो लोग, जो फौजी शामिल थे उस वॉर का हिस्सा थे, जिसमें से काफी सारे जो फौजी थे उनको शहादत भी हुई, तो वो आपके इमीडिएट सीनियर भी थे. मतलब आपसे उनकी अच्छी खासी, जब आप ट्रेनिंग में थे तब उनसे मिलते थे, बातचीत होती थी.
0: बिल्कुल. बहुतों को हम बहुत अच्छे से जानते थे. हमारा वो हमारे से 1 या 2 और सीनियर्स थे. काफियों को हम एनडीए में मिले थे, कुछ को आईएमए में जानते थे. जो फेमस कैप्टन विजयन थापर थे,
1: जी,
0: वो मेरे साथ वाले कमरे में रहते थे. और मुझे याद है मैंने उनसे, जब वो पास आउट होके जा रहे थे, वो 6 महीने पहले पास आउट हुए थे.
1: अच्छा.
0: तो मैंने उनसे, उन्होंने मेरी कैसेट ले रखी थी माइकल जैक्सन की.
1: अच्छा.
0: तो मैंने कहा सर कैसेट तो वापस कर जाओ. कहते अरे यार जब नेक्स्ट मिलेंगे तब दे देंगे.
1: Okay.
0: मतलब आज भी वो बात याद है. उसके बाद फिर तो हमें यही पता लगा कि उन्होंने देश के लिए इतना बड़ा काम किया.
1: जी.
0: सुमित रॉय, विक्रम बत्रा, सारे हमारे सीनियर्स थे.
1: अच्छा.
0: और मतलब देश इनके बारे जितनी बात करे उतनी कम है. इतनी यंग एज पर आप किसी भी वॉर में देखिए, इंडियन आर्मी के यंग ऑफिसर्स की जो रेशो ऑफ सेक्रीफाइस है वो किसी भी देश से ऊपर मानी जाती है. क्योंकि जब हम लोग पहुंचते हैं
1: जी,
0: तो सारे टैक्टिक्स एक तरफ, हम कहते हैं हम ही चार्ज करेंगे. आप हम अपने जवानों को सभी यही बोलते हैं, मेरा पीछा मेरा. तो इसीलिए ये एक प्रिंसिपली हमारी आर्मी बहुत, ना केवल एथिकली, बहुत
1: एथिकली और साथ ही साथ
0: वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड एंड प्लेस्ड. लेकिन उसका ये भी कारण है कि जितने यंग ऑफिसर्स जाते हैं उनमें से कोई ऐसा नहीं होता तुम आगे चलो हम तुम्हारे, हम कहते
1: हम आगे चलेंगे,
0: हम आगे चलेंगे तुम हमारे पीछे चलो.
1: क्या बात है. ये जज्बा तो सर काबिल तारीफ है. तो ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग कहानियां और यादगार किस्से हैं जो हम मेजर मानिक के साथ डिस्कस करेंगे आज के संदेश टू सोल्जर्स में. और साथ ही एक चीज और आपको मैं बता दूंगा कि जिसमें हम आगे बात करेंगे कि मेजर मानिक ऑथर भी हैं और इन्होंने एक किताब भी लिखी है. तो हमारे साथ है मेजर मानिक एम जॉली, इंडियन आर्मी से सेना मेडल से सम्मानित. आज के रहेगी बात जारी संदेश टू सोल्जर्स में.

0: 102.6 देश के नंबर 1 रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स आप सुन रहे हैं मेरे साथ, मेरा नाम है शाहिद और मेरे साथ हैं आज के संदेश टू सोल्जर्स के खास मेहमान मेजर मानिक एम जॉली, सेना मेडल से सम्मानित इंडियन आर्मी वेटरन, गोरखा राइफल्स और मिलिट्री इंटेलिजेंस फील्ड कमांडर, कॉर्पोरेट मिलिट्री इंटेलिजेंस, कॉर्पोरेट इनोवेटर, मास कम्युनिकेशन स्ट्रेटजिस्ट, नेत्रम डिफेंस रिव्यू के फाउंडर हैं और साथ ही सेलिब्रेटेड ऑथर हैं, टीवी पैनलिस्ट हैं, लीडरशिप कोच हैं और काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस में कश्मीर में इन्होंने ट्रूप्स को भी कमांड किया है। हम एक बार फिर स्वागत करेंगे मेजर मानिक जॉली का। सर बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर संदेश टू सोल्जर्स में।
1: थैंक यू सर। थैंक यू
0: सर। मैं आपके बारे में जब बात करना शुरू करता हूं तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं और फिर भी कुछ ना कुछ रह जाता है, लेकिन उसके बारे में हम साथ साथ बात करते रहेंगे। पहले सर मैं आपके वो जो गैलेंट्री अवार्ड हैं उनके बारे में जानना चाहूंगा। आपको पहला सेवा मेडल से सम्मानित किया गया जो गैलेंट्री अवार्ड कहा जाता है आर्मी का, तो वो किस तरह से और किस उपलक्ष्य में आपको दिया गया?
1: ये मेरी नौकरी का पहला दूसरा साल ही था। मैं यंग कैप्टन था और कुपवाड़ा में हम लोग तैनात थे। मेरी गोरखा रेजिमेंट यूनिट का हिस्सा था मैं
0: जी।
1: तो मेरी जो यूनिट है फर्स्ट बटालियन फोर्थ गोरखा राइफल्स, तकरीबन 200 साल पुरानी हो जाएगी थोड़े दिन में।
0: ओके।
1: वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेजिमेंट्स। तो बहादुरी और ड्यूटी हमारे रग रग में तैयार किया जाता है। तो उसमें हमारी यूनिट ने इतना अच्छा परफॉर्म करा था, हमने 1.5 साल में तकरीबन 100 टेररिस्ट मारे थे।
0: ओके।
1: तो यूनिट को भी साइटेशन मिला था। तो हमने बहुत ऑपरेशंस करे, उनमें से एक ऑपरेशन में मुझे अवार्ड मिला था जिसमें टेररिस्ट ने हम पर हमला किया था जंगल में और उन्होंने हमारे भी एक सैनिक शहीद हो गया था। फिर उन टेररिस्ट को मार के अपने शहीद सैनिक की बॉडी वापस लाने के लिए मुझे सेना मेडल दिया गया था।
0: तो ये पूरा एक मिशन रहा होगा जिस तरीके से आपने बताया कि ये पूरा एक ऑपरेशन रहा होगा। तो सर वो तो बड़ा टफ और बड़ा ही खतरनाक रहा होगा, कुछ बताइए उसके बारे में।
1: देखिए जो ये ऑपरेशन है आज इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं, मैं और यही बात आपके लिसनर्स को बताना चाहता हूँ
0: जी
1: कि हम सब अपने घर में बैठे हैं, FM सुन रहे हैं, बारिश का मौसम है, चाय पकौड़े खा रहे हैं
0: जी।
1: पर यही टफ और डेंजरस मिशन इस टाइम लाखों सैनिक कश्मीर के जंगलों में और नॉर्थ ईस्ट के

0: में कर रहे हैं
1: अभी भी कर रहे हैं अपनी
0: इस
1: ड्यूटी।
0: दिस वेरी मोमेंट एज वी आर स्पीकिंग, डेली करते हैं
1: जी
0: 365 दिन। तो एक सोल्जर की लाइफ, किस सेकंड आपको जंगल में कहाँ टेररिस्ट मिल जाए कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। कभी कभी आप महीनों सालों भटकते रहते हैं, आपका इनकाउंटर नहीं होता, कभी आपके एक महीने में 4 इनकाउंटर हो जाते हैं। तो इसकी प्रेडिक्टेबिलिटी जीरो, बट पॉसिबिलिटी इज़ वेरी हाई। सो व्हाट हैपेंस, आप जाते हैं, आपको इनकाउंटर हो गया, इसमें बड़ा चांस है आपने पहले उनको देख लिया, उन्होंने आपको पहले
1: अच्छा।
0: देख लिया, वो फायर करके भागना चाहेगा, वो रुक के लड़ना चाहेगा। बहुत इतने ज़्यादा फैक्टर्स आते हैं, वो ऊपर है, आप नीचे हैं, आप नीचे, तो इतने फैक्टर डिसाइड करते हैं उस इन दैट वेरी मोमेंट कि व्हाट विल बी द आउटकम, कि
1: और
0: इस लड़ाई से कौन कैसे निकलेगा।
1: तो सर जब मिशन पर निकलते हैं सोल्जर्स हमारे निकलते होंगे, तो वो ये पता होता होगा कि या तो मतलब जीत कर वापस आएंगे मार करके, या फिर
0: शहीद
1: होकर।
0: ये फौज का प्रिंसिपल है हमारे यहाँ, देर इज नो रनर्स अप, यू नो, ऐसा कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है। इंडियन आर्मी में हमें एक ही चीज सिखाई जाती है, विक्ट्री और सेक्रीफाइस। या सो आप अगर आपको कहा गया है, और कारगिल वॉर अगेन फिर से जो हम पहले भी बात कर रहे थे, जो यंग ऑफिसर्स इतने सेक्रीफाइस हुए, क्योंकि ट्रेनिंग डे पहले दिन, हम 16 साल के होते हैं जब एनडीए ज्वाइन करते हैं,
1: अच्छा,
0: उस दिन से लेकर जब तक 4 साल ट्रेनिंग है, कमीशन होते, एक ही चीज सिखाई जाती है कि अपने देश के लिए, अपनी फौज के लिए, अपनी यूनिट के लिए, आपके ट्रेंच में जो साथी है उस बड़ी के लिए लड़ाई लड़नी है,
1: उस बड़ी के लिए।
0: या तो आप उसके लिए लड़ते हो, वो आपके लड़ता है, ऐसी टीम बनती है।
1: क्या बात है सर, मतलब वो आपके लिए जान कुर्बान के लिए तैयार है और आप उसके लिए, एक दूसरे के लिए।
0: यही कॉन्फिडेंस है जो आर्मी लीडर्स को कॉर्पोरेट लीडर्स इतना फर्क बनाता है, क्योंकि एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है।
1: जी
0: उस जवान को पता है मेरा जो ऑफिसर है कभी ऐसा ऑर्डर नहीं देगा कि मेरी जान खतरे में आए।
1: क्या बात है सर,
0: अगर खतरा होगा तो खुद पहले जाएगा। और एक ऑफिसर को मालूम है कि जब तक मैं हूं, ये मेरे जवान मेरे से आगे लड़ने को तैयार है। तो जब ये इस तरह की
1: ये जो जज्बा है,
0: हाँ जी, जज्बा रहता है, तो सब एक से बढ़कर
1: एक दूसरे के लिए, अपने साथी के लिए, बड़ी के लिए जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं।
0: और कॉन्फिडेंस रहता है कि
1: कॉन्फिडेंस रहता है,
0: अपने सुपीरियर के ऑर्डर में पूरा फेथ है कि ये कभी ऐसा नहीं करेगा कि मेरी जान खतरे में। हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं, हम दुश्मन को मारने के लिए लड़ रहे हैं। वो कहते हैं ना, गिविंग लाइफ फॉर योर कंट्री इज एन ऑनर, तो लेट दैट ऑनर बी ऑफ एनिमी।
1: क्या बात है
0: वो,
1: क्या बात।
0: हाँ, तो हमारा काम है जीतना, दुश्मन को मारना। तो एक बहुत ही अलग लेवल की ट्रेनिंग और कैपेबिलिटी डेवलप करी जाती है आर्मी में। इसी कारण वो ऐसे ऑपरेट करती है। अगर आप उस ढर्रे को कहीं और अप्लाई करना चाहेंगे जहां पे लाइफ एंड डेथ की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो फिर वो नहीं है सक्सेसफुल होता,
1: नहीं हो सकता। सर वही चीज है कि जैसे आपने कहा कि ट्रेनिंग कितनी टफ होती है एक आर्मी ऑफिसर की, लेकिन उस टफ ट्रेनिंग के बावजूद भी वो जो जज्बा है, शायद वो उससे भी ज्यादा भारी है उस पर, उस ट्रेनिंग पर वो जज्बा, कि वो जो अपने नेशन, अपने वतन के लिए, देश के लिए, अपने बड़ी के लिए, अपनी यूनिट के लिए।
0: देखिए मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल, वही भी हम एनडीए जाए 16-17 साल, इट्स जिसको बोलते हैं इम्प्रेशनेबल एज, 16-17 साल में आप दुनिया को समझना शुरू करते
1: बिल्कुल
0: हैं।
1: बिल्कुल।
0: अब जो लोग कॉलेज जाते हैं उनके चारों तरफ, फॉर एग्जांपल आज का देखते हैं इंस्टाग्राम पे वायरल रील बनाना,
1: बिल्कुल सर, सोशल मीडिया पूरा एकदम,
0: यू नो, हमारे आसपास क्या होता था, हम जहां ट्रेनिंग करते थे वहां लिखा था एक गोली एक दुश्मन, जो हमारे कमरों किल डेथ बिफोर इट किल्स यू, आई विल डाई फॉर माई कंट्री, चारों तरफ
1: मोटिवेटेड, मतलब स्लोगन्स आपको मिल रहे हैं।
0: आप ऐसे एनवायरमेंट में होते हो कि दिन रात आप एक ही चीज सोचते हो कि मैं इस देश के लिए बनाऊं, और अगर कभी जरूरत पड़ेगी
1: तो मैं अपनी जान कुर्बान करूंगा,
0: बिल्कुल, विदाउट अ डाउट। ये तो
1: क्या बात है,
0: इसमें कोई हेजिटेट नहीं करेगा कभी।
1: सर बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें हैं जो मैं आपसे आगे भी करूंगा, अभी एनडीए के बारे में आपसे पूछूंगा कि आपने उस ट्रेनिंग के दौरान क्या क्या, जाहिर है वो वक्त बड़ा ही मेरे ख्याल यादगार होता है बडीज के साथ, और इंटरेस्टिंग भी, और कुछ शरारतें भी जरूर होती हैं उस जमाने में।
0: बिल्कुल, वो एज ऐसी होती है और टाइम ऐसा होता
1: है। तो हम अपने लिसनर्स को यहाँ बताना चाहेंगे कि आप हमें मैसेज करें, मैसेज बहुत सारे आ चुके हैं सर, मैं आपको बता दूं, और एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आप हमें मैसेज करके हमारे आज के गेस्ट मेजर मानिक एम जौली से सवाल कर सकते हैं। नंबर है 9868107070। सर मैं सोचता हूं कि आगे बढ़ूं तो कुछ मैसेजेस तो मैं अभी ले लूं। ये असम से सर मैसेज आया है, गुड आफ्टरनून कह रहे हैं, ये हितेंद्र दास हैं सर, आपको भी और हमें भी बहुत बहुत धन्यवाद आपके मैसेज के लिए हितेंद्र। और उसके बाद मैसेज आया है स्वतंत्रता दिवस का, सब सोल्जर भाइयों का हमारा सल्यूट, हमारा भारत माँ की रक्षा सभी क्षेत्र में उनके बलिदान क्या श्रेष्ठ जीवन का संदेश है। कर्नाटक

0: राजीव विजयपुर डिस्ट्रिक्ट आराकेरी गांव से। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, आरकेडी पंडित चन्नप्पा सरवाड़कर। सर ये मैसेज है।
1: थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद आपको भी।
0: और सर ये मैसेज है, हाय आम अजय अहिरवार फ्रॉम मध्य प्रदेश, क्लास 12 सर ये स्टूडेंट है। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए, व्हाट थिंग्स शुड आई रिमेंबर ड्यूरिंग प्रिपेरेशन एंड फॉर एसएसबी इंटरव्यू, मेनली एसएसबी गाइडेड फॉर सिविलियन। और अजय अहिरवार सर मध्य प्रदेश है, सर इनको कुछ आप गाइड करना चाहेंगे?
1: तो शायद वैसे तो ट्रेनिंग के लिए मतलब बहुत लंबा होता है सर, पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा जो
0: जी
1: अक्सर लोग गलती करते हैं, वो ट्रेनिंग की प्रिपरेशन करके, इंटरव्यू की तैयारी करके कुछ और बन के दिखाना
0: अच्छा
1: चाहते हैं और वो पक्का रेसिपी टू फेलियर है।
0: अच्छा
1: आप इंटरव्यू में जैसे हैं 100% वैसे रहिए, और वो तो फिर इंटरव्यू पर है, वो आपको शेयर, दैट इज, उसको कोई गारंटी नहीं कर सकता। पर अगर आप कुछ और बनने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली थ्रू नहीं होंगे। तो आप अपनी पर्सनैलिटी को कायम रखें, इंटरव्यू की तैयारी जो आप है।
0: क्या बात
1: अगर
0: है?
1: आपको पिक्चर पसंद है, आप बोलिए मुझे पिक्चर देखना पसंद है, ये मत
0: अच्छा,
1: बोलिए
0: अच्छा,
1: मुझे
0: अच्छा।
1: बुक्स पढ़ना पसंद है, क्योंकि टेबल के उधर जो बैठे उसने
0: जी
1: बहुत बुक्स पढ़ी है पकड़ लेगा आपको।
0: तो आपको जो आप हैं वही दिखाएं वहां पर।
1: बिल्कुल
0: सर एक और मैसेज है, जय हिंद सर जी, जय हिंद मेजर साहब, रजनीकांत रघुनाथ पाटिल महाराष्ट्र वार्ड 1 से मैसेज कर रहे हैं सर ये। और सर ये है संदेश,
1: जय हिंद
0: जी, शो बहुत खूबसूरत शुरू है जी, दिल को छू लेने वाली बहुत खूबसूरत जानकारियां मिल रही हैं। शाहिद जी नमस्ते, मानिक सर नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। यश शिंदे हैं सर ये मुंबई से, बहुत बहुत धन्यवाद आपके मैसेज के लिए, जय हिंद। और सर ये एक और मैसेज आ गया है, जय हिंद मेजर साहब, कारगिल वॉर तो हमने नहीं देखा है, मूवी में देखा, लेकिन आपके जरिए हम सुनते हैं तो हमारा सीना गर्व से फूल जाता है। एडवांस 80th हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस, वंदे मातरम। रोहित मेहर हैं सर ये बुदापाली विजयपुर बारगढ़ ओडिशा से,
1: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, सबको जय हिंद।
0: और सर सभी लोग इस वक्त जो है देशभक्ति के जो ना उसमें सराबोर हैं, जुनून में, जोश में, क्योंकि 15 अगस्त पर सब परसों नजदीक ही है, और ये स्वतंत्रता दिवस जो हमें याद दिलाता है कि जो कुर्बानियां दी गई इस देश की आजादी के लिए, उन सबको हम याद करते हैं। तो यहां पर हम आगे बढ़ेंगे सर, हम बात करेंगे अब एनडीए की। आपने एनडीए में जब आप आए तो क्या माहौल था वहां पर, नया नया एक्सपीरियंस कैसा लगा एक 16 साल के जब मानिक वहां पर आ रहे थे तो?
1: हाँ जी बिल्कुल, बहुत देखिए, एक तो आप घर से पहली बार बाहर गए होते हैं, और घर से पहली बार बाहर जाके आप किसी रिजॉर्ट में रह रहे हैं तो बात अलग है।
0: अच्छा।
1: लेकिन आप बिल्कुल एक वन ऑफ द टफेस्ट मिलिट्री एकेडमी में चले गए
0: जी,
1: जहां पे डिसिप्लिन इज द हाईएस्ट।
0: बिल्कुल,
1: आपसे 6 महीने सीनियर वो आपके लिए भगवान की तरह है, वो जो बोलेगा आपको करना पड़ेगा। फिजिकली इट्स वेरी स्ट्रेनिंग, वैसे तो मैं स्पोर्ट्स में था लेकिन
0: अच्छा।
1: एनडीए का अलग लेवल होता है, तो शुरू में आपको यू नो रूटीन इज वेरी टाइट, फिजिकली इतना डिमांडिंग है
0: जी,
1: तो एक बार तो हर कोई हिल जाता है।
0: बिल्कुल, क्योंकि आपने जैसे कहा स्पोर्ट्स में तो आप थे, लेकिन वो स्पोर्ट्स अलग है जो हम स्कूल में करते हैं या आपने, लेकिन जो आप एकेडमी में कर रहे हैं।
1: बट हमारे स्कूल में बाई चांस स्पोर्ट्स की अच्छी लेगेसी थी, तो मेरे को फिजिकली तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई परफॉर्म करने में। बट ये है कि शुरू में जाके, क्योंकि हम यू नो अपने घर पे रहे थे, कई बच्चे सैनिक स्कूल से आते हैं उनको थोड़ी आदत होती है।
0: ओके।
1: हम पहली बार घर से आए थे, मुझे याद है कि पहले एक दो हफ्ते में घर की बहुत याद आती
0: है,
1: क्योंकि चारों तरफ हर कोई आपको खाने को दौड़ता है एनडीए में, और घर पे तो जो भी है आपको
0: बिल्कुल जाहिर है, प्यार से,
1: प्यार
0: बिल्कुल, है। बिल्कुल।
1: तो मैं एक बार काफी दुखी बैठा था अपने रूम में, तो मेरे एक सीनियर आए, सीनियर मोस्ट थे, 6th टर्म में थे वो, तो क्या हुआ? मैं सर घर की बहुत याद आ रही है, तो कहते चिट्ठी लिखो।
0: अच्छा।
1: तो मैं आपको बस बता रहा हूँ बस सोच कैसे होती है, मैं कैसे चिट्ठी तो लिख चुका, कहते इधर आओ। मुझे अपने रूम में लेके गए
0: जी,
1: अपना परफ्यूम निकाला अच्छा सा, मेरे पे स्प्रे करा, कहते बस अब खुश हो जाओ, यही खुशी है अभी तुम्हें ऑर्डर है खुश होने का। मैं ठीक है सर। तो और उसके आई थिंक बट वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग वी हैड वाज, हमारे टाइम वहां पे मेजर साहब पिक्चर की शूटिंग हुई थी।
0: अच्छा, मेजर साहब अमिताभ बच्चन।
1: हाँ जी,
0: और अजय देवगन जी।
1: तो उस थोड़े महीनों के लिए अकेडमी का में इतने फनी इंसिडेंट्स हुए थे।
0: अच्छा, तो कई महीने वो शूट चला था?
1: आई थिंक एक दो तीन महीने तो चला था मेरे ख्याल से।
0: अच्छा।
1: तो उसमें क्या हुआ कि एक डेढ़ महीना तो चला था फॉर श्योर
0: जी,
1: एकेडमी ने मना कर दिया कि हम अपने कैडेट शूटिंग के लिए नहीं देंगे।
0: ओके।
1: तो जो प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स थे वो बॉम्बे से यंगस्टर्स को लेके आए, उनको तो 150 चाहिए थे, उन्होंने हमारे जैसी यूनिफॉर्म पहनाई,
0: ठीक है,
1: और उनसे परेड वरेड कराते थे और उनके शूटिंग वूटिंग के लिए यूज करते थे। लेकिन अब एकेडमी में ऐसा हो गया, जब भी आपको कोई सीनियर पकड़े इधर आओ, जूनियर यू, हम तो मुंबई से आया है शूटिंग वाला है, तो काफी क्योस मचा हुआ था उन दिनों।
0: अच्छा।
1: थोड़ी देर में सब सॉर्ट आउट हो गया, और फिर एक दो सीन थे जैसे क्रॉस कंट्री का

0: सीन है जिसमें एक पहाड़ी के ऊपर वो दिखाते हैं अजय देवगन फर्स्ट आया,
1: अच्छा
0: तो उसमें उन्होंने हमारे कैडेट्स वगैरह को बुलाया था कि पीछे आप लोग भागना, लास्ट में ये आगे आके फर्स्ट आ जाएंगे।
1: ओके, हीरो मतलब हीरो बन
0: हाँ,
1: जाएंगे, ठीक है।
0: हमारे कैडेट थोड़ा दिल पे लगे कि हमारे रहते कैसे फर्स्ट आ जाएगा। वो आई थिंक 10-15 बार शूट करना पड़ा, हर बार हम आगे आ जाते थे
1: अच्छा
0: कोई ना कोई। तो ऐसे इंसिडेंट्स बहुत, इट वॉज वेरी फनी। तो
1: अच्छा
0: हम लोग आई मीन काफी क्लोजली शूट, मैं भी एक दो किसी शूट में हूँ, भीड़ में कहीं पे दिख रहा हूँ इधर उधर।
1: अच्छा हम सर मैं मूवी देखूंगा आपको देखने के
0: हाँ जी
1: लिए।
0: प्लीज। तो काफी इंटरेस्टिंग मूवी थी, और
1: जी
0: उसका गाने भी, एक्चुअली इस मूवी के गाने भी बहुत अच्छे थे सभी।
1: हाँ, गाने सर बड़े सुंदर गाने थे, और सिंदूर सुंदर हीरोइन भी थी इसके अंदर, सोनाली बेंद्रे।
0: बिल्कुल
1: तो सर
0: बिल्कुल।
1: वहां पर गाने भी शूट हुए होंगे उसी एकेडमी में?
0: गाने शूटिंग हमने कभी देखे नहीं। आई
1: अच्छा
0: थिंक हमारे कुछ सीन्स वगैरह मेस के, पीटी ग्राउंड, क्रॉस कंट्री, मिलिट्री
1: ये हुए।
0: हॉस्पिटल, ये सब होते थे। लेकिन और सोनाली बेंद्रे तो पूरी एकेडमी की फेवरेट थी।
1: अच्छा
0: मतलब आप आई डोंट नो, लेट 90s में,
1: जी जी
0: एंड
1: जी
0: स्टिल टुडे शी इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेसेस,
1: यस
0: राइट?
1: ऑफ कोर्स
0: और वो एक्टिंग एज अ पर्सन, शी इज सो नाइस। जिनसे मिली भी सब इतनी तारीफ करते थे, कितने अच्छे से बात करती हैं। तो पूरी एकेडमी बस सारी
1: दीवानी
0: दीवानी थी, कहीं जहां वो होती थी बात देखने भाग जाते थे।
1: तो मैंने तो सर आपसे बात करते करते ना वो एक सॉन्ग भी निकाल लिया है, तो उसके बारे में बताइए सर कुछ, कोई किस्सा किसी शूट के दौरान आपके सामने आया हो, आपकी टीम के सामने आया हो।
0: हमें बस एक बार एक मिलिट्री हॉस्पिटल का वहां पे सीन है
1: अच्छा
0: मूवी में, तो जैसे ही होता था तो सारी एकेडमी में बात हो जाती, सोनाली बेंद्रे मिलिट्री हॉस्पिटल में आई है।
1: अच्छा
0: तो 1 घंटे में कई, मेरी टांग दर्द हो रही है, मेरी हाथ दर्द हो रहा है, वहां पे पहुंच गए बहुत सारे रिपोर्ट करने, सबको वापस भगा दिया था। तो
1: अच्छा
0: सब चलता रहता था वहां पे।
1: जी,
0: हाँ
1: तो अजय
0: जी।
1: देवगन की कभी कोई शूट आपके आसपास आपके सामने कभी हुआ, क्योंकि एकेडमी में ही शूट चल रहा था?
0: हाँ जी, वो ड्रिल ड्रिल में, पीटी में कई बार आते थे। बट आई मीन मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, पर जो लेवल ऑफ फिटनेस, जो लेवल एनडीए कैडेट्स का होता है,
1: बिल्कुल
0: वो फिल्मी हीरोज का नहीं होता। तो अक्सर मतलब थोड़ा सबड्यू करके, थोड़ा खर्च के उनसे करवाया जाता था, ताकि
1: अच्छा,
0: फिल्मी इफेक्ट पूरा दिख जाए।
1: बिल्कुल
0: हाँ
1: रीटेक्स के साथ
0: हाँ
1: वो
0: जी।
1: सब ठीक से हो
0: पर मैं
1: जाए,
0: आपको ये बता रहा हूँ, हमें बहुत अच्छा महसूस होता था। मतलब एक तरह का कॉन्फिडेंस होता था
1: कॉन्फिडेंस
0: कि बॉलीवुड वो बनने की कोशिश कर रहा है जो हम हैं,
1: जो आप हैं,
0: जो एक कॉन्फिडेंस आता
1: बिल्कुल
0: है कि ये मतलब वो एक्टर्स हैं, ऑब्वियसली वो फौजी नहीं है, वो अंडर
1: बिल्कुल
0: ट्रेनिंग नहीं है, पर हमें बहुत कॉन्फिडेंस आता था देख के कि हमने जो अचीव किया है, जो हमारी पर्सनालिटीज हैं, जो हमारा फिटनेस है,
1: फिटनेस है।
0: वो लोग एज एन एक्टर बनने की कोशिश करते हैं टू मेक अ गुड मूवी। सो वो कॉन्फिडेंस आपके साथ सारी लाइफ रहता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो मेजर साहब, मैंने यहां पर ये उस फिल्म का जो आपके साथ यादों में जुड़ी हुई है,
0: बिल्कुल
1: मेजर साहब, उसका ये खूबसूरत ट्रैक निकाल लिया है और आपकी पसंद का भी है। मेजर मानिक एम जौली हमारे साथ हैं, सेना मेडल से सम्मानित इंडियन आर्मी वेटरन। आप बने रहे हमारे साथ संदेश टू सोल्जर्स में, और मैसेज करते रहे।

0: 102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है संदेश टू सोल्जर्स, शाहिद आपके साथ और हमारे साथ हैं आज के हमारे खास मेहमान मेजर मानिक एम जोली। इंडियन आर्मी वेटरन हैं, सेना मेडल से सम्मानित हैं और गोरखा राइफल और मिलिट्री इंटेलिजेंस में रहे हैं। फील्ड कमांडर, कॉर्पोरेट इनोवेटर और मास कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजिस्ट हैं। फाउंडर हैं नेत्रम डिफेंस रिव्यू के और सेलिब्रेटेड ऑथर भी हैं। टीवी पैनलिस्ट हैं, लीडरशिप कोच हैं और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं बार बार अगर बताना भी चाहूँ तो भी कुछ ना कुछ रह जाएगा। तो मेजर साहब, हम बात कर रहे थे सर आपके एनडीए के दौर की, वो बड़े इंटरेस्टिंग किस्से आपने जो सुनाया और हमने गाना भी वो सुना, सोनाली बेंद्रे पर और अजय देवगन पर जो पिक्चराइज किया गया, आपने उनको देखा कि वो शूट के दौरान क्या क्या वहां पर इंसिडेंट्स हुआ करते थे। तो मैं आगे बढ़ूं, मैं सोच रहा हूं कि पहले क्यों ना मैसेजेस ले लेता हूं क्योंकि हमारे लिसनर इंपॉर्टेंट हैं, वो इंतजार कर रहे होंगे हम उनके मैसेज पढ़ के सुनाएं। सर मनीष इदरीसी का मैसेज है रामपुर बिलासपुर से। नमस्कार सर जी, नमस्कार मेजर साहब।
1: नमस्कार, जय हिंद।
0: ये मैसेज है, जय हिंद टू सर, आई एम अजय अहिवार फ्रॉम मध्य प्रदेश। फिर से आया इनका मैसेज और क्लास 12 प्रिपेयर्ड कर रहे हैं ये। फिर से मैसेज आया और हमने आपको बता दिया है, सर ने बताया कि किस तरीके से आप कर सकते हैं और कैसे प्रिपरेशन करनी है। अब ये मैसेज आया सर, संदेश टू सोल्जर्स, मेजर साहब जय हिंद। शो रोचक, ज्ञानवर्धक, लाभप्रद और सकारात्मक संदेश देने वाला है। मेजर साहब इस शो से लोग इंस्पायर्ड होंगे, देशभक्ति का जज्बा कायम रहेगा, ये कह रहे हैं।
1: धन्यवाद, जय हिंद।
0: और ये कहते हैं कि मेरा मानना है कि हर दिल में देश प्रेम की आग सुलगती रहनी चाहिए। और ये एक आगे कुछ पंक्तियां लिखते हैं सर, अर्ज है चलो फिर से वो नजारा याद कर लें, शहीदों के दिल में थी जो ज्वाला वो याद कर लें, जिसमें बहकर आजादी पहुंची थी किनारे पर, बलिदानियों के खून की वो धारा याद कर लें।
1: बहुत बढ़िया।
0: तो ये हैं सर एडवोकेट वारिस अली खान, संजय नगर, ऐशबाग, लखनऊ से, जिन्होंने ये मैसेज किया है।

0: और इसके अलावा मैसेज है विलेज बरकतपुर डिस्ट्रिक्ट बिजनौर स्टेट यूपी, नेम चरुण कुमार, आप सभी आर्मी ऑफिसर्स को मेरा जय हिंद सर।
1: आपको भी जय हिंद।
0: और यह है सर, नमस्कार जी, होली चौक उत्तम नगर से जयराम खोरवाल, प्रोग्राम हमें अच्छा लग रहा है जी, खुशनसीब हैं वो जो वतन पर मिट जाते हैं, मरकर भी वो लोग अमर हो जाते हैं, करता हूं उन्हें सलाम ए वतन, सलाम ए वतन पे मिटने वालों, तुम्हारी हर सांस में तिरंगे का नसीब बसता है, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद।
1: भारत माता की जय, जय हिंद। बहुत अच्छा मैसेज साहब
0: जी। सर मैसेज और भी हैं, मैं सोच रहा हूँ कि पढ़ के सुनाई दूँ फिर आगे हम बातचीत करेंगे, बहुत सारे मैसेज हैं सर, ये बहुत लंबा एक मैसेज है। गुड आफ्टरनून टू यू बोथ सर, संदेश टू सोल्जर्स, अ नाइस प्रोग्राम, सैल्यूट टू इंडियन आर्मी नेवी एयरफोर्स सोल्जर्स एंड ऑल्सो योर पेरेंट्स एंड फैमिली मेंबर्स, थैंक यू शेयरिंग योर वैल्यूएबल फीडबैक एक्सपीरियंस स्पेशली रिगार्डिंग कारगिल वॉर, रिगार्डिंग योर अचीवमेंट एंड मेडल्स विच आर डिजर्विंग ऑन द 15th ऑफ आवर कंट्री इंडिया सेलिब्रेटिंग 80th इंडिपेंडेंस डे, ऑन दिस ओकेशन आई विश All Indians happy 80th Independence Day, भारत माता की जय, अपना भारत महान है, वंदे मातरम, जय हिंद। फ्रॉम एम आर मधुसूदन, ये एम बी राजेश्वर, सन ऑफ एम बी राजेश्वर, दत्तर कॉलोनी नियर शिवालयम टेम्पल, सीता फल मंडी, सिकंदराबाद, तेलंगाना से सर ये मैसेज आया है।
1: थैंक यू,
0: काफी खूबसूरत और बड़ा लंबा मैसेज था ये। और ये है, जय हिंद सर, आपको और हमारे देश को समस्त जवान स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई, आप हैं तो हम सुरक्षित हैं, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, मैं शबनम बी के दत्त कॉलोनी नई दिल्ली से।
1: धन्यवाद, आपको भी जय हिंद। और मैं बोलना चाहूंगा
0: जी जी जी
1: कि ये सारे अच्छे मैसेजेस सुन के, चाहे मैं अभी रिटायर्ड हूं या सर्विंग हो
0: जी,
1: किसी भी फौजी को बहुत अच्छा लगता है, जिसको बोलते हैं ना कि आपको पता है भाई हमारे देश में इतना प्रेम और रिस्पेक्ट है फौजियों के लिए।
0: बिल्कुल सर बिल्कुल,
1: आप अपनी ड्यूटी करते हुए घबराते नहीं है, आपको पता है पीछे मेरा देश है,
0: पीछे मेरा देश है, देशवासी हैं सर, और देशवासी सर आपको सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं, और सर हम आपके ऋणी हैं, क्योंकि जो हमारे सोल्जर्स हैं वो हमारे देश के भीतर भी, देश की सीमाओं पर भी, देशवासियों की सुरक्षा के लिए समर्पित हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है कि उनका जो डेडिकेशन है देश और देशवासियों के लिए, तो वो सैल्यूट है सर हमारे सोल्जर्स को, इसीलिए हमारा ये प्रोग्राम है संदेश टू सोल्जर्स। सर मैसेजेस में लगातार अभी मैं सोचता हूँ रोक दूं, अभी बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, मैं आपसे सर आगे बातचीत बढ़ाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि सर आपसे हम जानने के, फिर आप जब गोरखा रेजिमेंट में आप हुए कमीशन 1999 में,
1: हाँ
0: तो वो फिर जो सफर शुरू हुआ, हाँ अब आप बताएं कि फिर जिस तरह से आपका फिर आगे आप जाते हैं।
1: मैं तो फिर कमीशन कुपवाड़ा में था, कश्मीर में फॉरवर्ड एरिया है, वहां पे हमारा रोल या तो लाइन ऑफ कंट्रोल पे कारगिल के एकदम बाद था।
0: अच्छा,
1: तो सीज फायर तो नहीं था, तो दिन रात गोलाबारी होती रहती थी।
0: अच्छा,
1: तो हम भी उन पर करते हैं, वो भी हम पर करते रहते हैं। उस टाइम ये क्रॉस बॉर्डर रेड बहुत होती, उन्होंने काफी सोल्जर्स हमारे उसमें भी शहीद हुए, लेकिन जो था मतलब वो एक सोल्जर के लिए एज अ सोल्जर
0: जी
1: एक एक्सपीरियंस था कि आप किसके लिए सोल्जर बने। अगर आपने लड़ाई नहीं देखी, अगर आपने गोलाबारी नहीं देखी, अगर आपने वो, तो इस हिसाब से फिर हम काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस में चले गए
0: जी,
1: जहाँ पे हमने, मेरी यूनिट ने बहुत अच्छा करा, क्योंकि वो बहुत एक्टिव एरिया था।
0: अच्छा, मतलब सेंसिटिव एरिया था और हमेशा कुछ ना कुछ हैपनिंग।
1: तो कुपवाड़ा बॉर्डर जो है वहां से बहुत सारे लॉन्च पैड है जहां से पाकिस्तान टेररिस्ट अंदर भेजता रहता है।
0: ओके,
1: तो इस कारण वो बहुत एक्टिव एरिया माना जाता है वहां
0: पर, और वहां पर आपकी पोस्टिंग थी।
1: हाँ जी, तो आम आदमी एक्चुअली अक्सर जब भी आप बात करते हो जंगल में टेररिस्ट ढूंढ रहे थे, पहाड़ में ढूंढ रहे थे
0: जी,
1: उसका स्केल समझ नहीं पाता, स्केल पे हम बात कर रहे हैं कि वो जंगल कितना बड़ा था।
0: अगर मैं इमेजिन भी करूं तब भी मैं उस लेवल तक नहीं पहुंच सकता।
1: यूं लगा लीजिए एक पूरा शहर जंगल है।
0: अच्छा,
1: जिस शहर में आप लोग, आपके लिस्नर रह रहे हैं
0: जी,
1: वो पूरा शहर जंगल है और आप 100 लोग हैं।
0: अच्छा,
1: आप कितना ढूंढेंगे, और उसमें पहाड़ियां भी हैं, क्लिफ भी हैं, बर्फ भी पड़ी हुई है 20-20 फुट।
0: 20-20 फुट,
1: 20 फुट तो एवरेज आफ्टर स्नोफॉल होती है।
0: अच्छा,
1: और आप 9000 फीट से आपका बेस शुरू होता है, 15-17,000 फीट तक जा रहा है, आपको सारा पेट्रोल करना है। तो अक्सर आपने देखा होगा फौजी से आप सब लोग पूछते हैं कैसा था ये, हाँ ठीक था, अच्छा था,
0: तो यानी कि वो जो ठीक था कह रहे हैं वो,
1: ओनली रीजन इज समझा पाना पॉसिबल नहीं है कि वो किस तरह का एक्सट्रीम एनवायरनमेंट है।
0: सर मैं ये आपसे जरूर जानना चाहूंगा, वो आप बताइए प्लीज।
1: तो सी जो माउंटेन्स हैं वहां पे क्लिफ्स हैं
0: जी,
1: और बर्फ पड़ी हुई है, एक पीछे की तरफ पूरा जंगल है, चलने की जगह नहीं है, स्नो स्टॉर्म आ जाता है, ब्लिजर्ड आ जाएगा।
0: अच्छा,
1: उसके बाद ऊपर से टेररिस्ट है,
0: जाहिर है,
1: जो वेट
0: सबसे बड़ा,
1: जो हाँ जो वेट कर रहा है कि आप
0: वो
1: उसको पहले दिख जाए
0: जी।
1: खाना आपको हफ्ते में एक बार हेलीकॉप्टर से आता है।

0: एक बार,
1: हाँ, जो भी फ्रेश राशन वो आपको हफ्ते में एक बार मिल जाएगा, राइट। आपको अगर गर्म गर्म गर्म रहना है, ये 20-25 साल पुरानी बात है, तो उसमें केरोसिन का स्टोव यूज करना पड़ रहा
0: ओके
1: है। मॉडर्न इक्विपमेंट उस टाइम नहीं थे
0: जी
1: डेली आप, क्योंकि अनदर थिंग इज, ये कारगिल के एकदम बाद की बात है,
0: हाँ
1: तो इंडियन आर्मी ने, भारत सरकार ने डिसाइड करा कि कारगिल इसलिए हुआ था कि कुछ पहाड़ी हमने विंटर वैकेट करी थी तो पाकिस्तानी आकर बैठ गए थे,
0: ओके
1: तो अब हम कुछ भी विंटर वैकेट नहीं
0: नहीं
1: करेंगे।
0: करेंगे, हम वहां पर भी अपनी ड्यूटी रखेंगे।
1: तो नेचुरली प्रेशर इज ऑन आर्मी। अब वो पहाड़ियां जहां पर हम आज तक गए भी नहीं थे, उनके ऊपर छोटे छोटे टुप्पे, फिल, रॉक, वहां पे जाके नई पोस्ट एस्टेब्लिश करना, रिसोर्सेज नहीं। क्योंकि आप अगर फौजी को ये भी बोल देंगे ना, चप्पल में जाओ फौज, बर्फ में जाके पोस्ट
0: जी
1: बना लो, वो चला जाएगा।
0: अच्छा,
1: हमें आदत में नहीं होता है बोलना कि ये कंप्लेंट करे कि ये नहीं है वो नहीं
0: एक्सक्यूज
1: है,
0: कुछ नहीं।
1: या तो उस हिसाब से काफी डिफिकल्टी में सर्विस थी। और उस सारे में आपको अंदर आते हुए टेररिस्ट को भी रोकना है, जो अंदर आ गए उनको भी ढूंढना है,
0: अच्छा
1: आपको ये भी इंश्योर करना है कि जो वहां पे जो गांव है, लोग हैं, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आप, वो आपके देशवासी हैं,
0: बेशक
1: आप नहीं
0: उनकी भी
1: चाहते,
0: हिफाजत।
1: हाँ, आपको ये नहीं चाहते वो सोचे फौज हमारे को तो परेशान कर रही है। तो इट इज अ वेरी हाई स्ट्रेस, वेरी स्ट्रेसफुल जॉब। और एक ही चीज आपको कॉन्फिडेंस देती है, मैं बता रहा हूँ ऑनेस्टली, ये इस तरह के मैसेजेस कि आपको बस
0: जहां से
1: ये,
0: हमारी बात शुरू हुई
1: हाँ,
0: थी,
1: कि मैं आपको यही बस, कि जो मैं कर रहा हूं इस देश में उसकी वैल्यू है, ये लोग उसको मानते हैं मैं क्या कर रहा हूं,
0: जी उनको
1: और
0: कदर
1: उस,
0: है इस बात की और उनको परवाह है कि भाई हमारा जो फौजी
1: मतलब
0: हमारा भाई
1: मान की
0: है।
1: बात है, सारे सरकारी डिपार्टमेंट दुनिया के एक तरफ, सारे लीडर ब्यूरोक्रेसी, और
0: बिल्कुल,
1: फौजी
0: फौजी
1: एक तरफ,
0: एक
1: जो
0: तरफ।
1: प्यार हम फौज को मिलता है वो नहीं, और इसी कारण से
0: जी
1: आप कॉन्फिडेंटली देश सेवा में लगे रहते हैं।
0: बिल्कुल सर, इसमें कोई दो राय नहीं है, और ये तो मैं पूरी यकीन के साथ कह सकता हूँ। हम हर हफ्ते यहाँ पर संदेश टू सोल्जर्स में अपने जो हमारे आर्मी वेटरन्स हैं और जो सर्विस में भी हैं, फौजी आते हैं, तो उनसे मिलकर के वो जो देशभक्ति का जज्बा है ना सर, जो है ऑलरेडी, वो कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि वो बातें, वो उनके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, लाइव एक्सपीरियंसेस, जो हम कभी ना महसूस कर सकते, हम कितना भी इमेजिन करने की कोशिश करें, जैसे कि आपने बताया अभी, वो हम कर ही नहीं सकते। और एक फौजी उसको एक्सप्लेन कर पाने में मतलब असमर्थ ही महसूस करेगा कि मैं कैसे बताऊं। तो ये एक अननोन सी एक जो डेडिकेशन हम महसूस करते हैं कि वो हमारे फौजियों की है, तो वो सिर्फ एक दिल से जज्बा ही हम जाहिर कर सकते हैं,
1: बिल्कुल,
0: इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। सर इसी दौरान जैसे अब आप जब दूर होते हैं, घर से भी दूर होते हैं, और फिर ऐसी सिचुएशन में, ऐसी लोकेशंस पर, ऐसे हालात में होते हैं जहां पर जैसे आप, कितने टफ, तो फिर घर की भी याद आती होगी।
1: बहुत बिल्कुल। और ये दिस इज, वहां पे मोबाइल भी नहीं था,
0: और उस जमाने में
1: तो
0: तो
1: महीनों महीनों में बात होती थी, मैं 10-15 दिन बाद चिट्ठी आती थी,
0: 10-15 दिन में
1: क्योंकि
0: एक बार।
1: पहाड़ में वो एक खच्चर के ऊपर वो पोर्टल लेके आता था,
0: अच्छा
1: चिट्ठी दूर से दिख जाता था, 2 किलोमीटर दूर
0: मेरी
1: से आ रहा है, और सारे एक्साइटेडली बैठे रहे थे कि मेरी भी चिट्ठी आई
0: भी
1: है,
0: चिट्ठी
1: मेरी भी।
0: आएगी
1: तो जो आप फिल्मों में छोटा सा दिखाते हैं ना चिट्ठी का क्रेज, वो
0: जी।
1: मजाक नहीं है एक्चुअली।
0: अच्छा
1: आपको महीने में एक बार चिट्ठी आनी है आपकी, और आपको लगता है यार कहीं से, परिवार से, आपके दोस्तों से
0: दोस्तों
1: कुछ
0: से
1: खबर आए, तो लेटर्स की बहुत ज्यादा वैल्यू होती थी वहां
0: क्या
1: पर।
0: बात है, मतलब
1: हाँ,
0: लेटर्स की हम आज
1: और
0: ये
1: 15 दिन से आप लिख रहे हो,
0: जी
1: आपको उसी डाक से वापस
0: वापस
1: भेज
0: भी
1: दिया।
0: भेजना है। ओके
1: तो लेटर्स की बहुत वैल्यू। तो उस टाइम एक रेडियो कैसेट ये सब होता था,
0: अच्छा,
1: तो आपके पास कुछ कैसेट्स बाई चांस जो आपके साथ ऊपर चली
0: ऊपर
1: गई,
0: चली गई।
1: वो नेचुरली या तो

मेजर मानिकम जॉली हैं आज के संदेश शो के हमारे खास मेहमान, सेना मेडल से सम्मानित इंडियन आर्मी वेटरन और मेजर मानिक की पसंद का ये ट्रैक आप भी एंजॉय करें हमारे साथ, बने रहें संदेश सोल्जर्स में, शाहिद आपके साथ।

102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स में आप सुन रहे हैं शाहिद की आवाज और मेरे साथ हैं आज के हमारे खास मेहमान मेजर मानिक एम जौली सेना।

0: मेडल से सम्मानित इंडियन आर्मी वेटरन, और ये गाना मेजर साहब की पसंद से हमने सुना सुस्तम सौराब से। सर यहाँ पर बातचीत का सिलसिला जो शुरू हुआ था वो तो उतना शायद जोशीला नहीं था, लेकिन जिस जोश से हम आगे बढ़े हैं तो प्रोग्राम खत्म होने का समय आ गया और अभी मेरे पास बहुत सारी बातें आपसे करने के लिए बची हुई हैं। तो मैं मैसेजेस जो ऑलरेडी काफी सारे इकट्ठे हो गए मैं उनको बाद में पढ़ूंगा, लेकिन मैं अभी आपसे ये जानना चाहूंगा मिलिट्री इंटेलिजेंस में भी आपने एक काफी बड़ा समय दिया, एक बड़ा रोल प्ले करा, तो वो क्या था एक्सपीरियंस आपका, उसके बारे में बताइए।
1: तो शायद मिलिट्री इंटेलिजेंस में आप वॉलंटियर करते हैं कि मैं इसमें सर्विस करना चाहता हूँ, आपको 2 साल का प्रोबेशन रखते हैं वो।
0: अच्छा।
1: तो अराउंड 10-11 साल मैं MI में था, तो वहाँ पे मैं काउंटर इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट था।
0: अच्छा।
1: और स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन, काउंटर इंटेलिजेंस की हमारी खबर बाहर नहीं जानी चाहिए।
0: ओके।
1: इंटेलिजेंस जैसे होती है उनकी खबर लें, तो अलग अलग डोमेन में, और नॉर्थ मेरा डोमेन था तो उसमें वही नौकरी करी मैंने ज़्यादा। काफ़ी ऑपरेशंस किए हमने, काफ़ी देश में जो जासूस घूम रहे हैं काफ़ी पकड़े हैं।
0: अच्छा।
1: तो इस तरह से मेन टास्क हमारा फिर ये होता है कि
0: कोई अगर इंट्रूडर है,
1: हाँ जी,
0: तो उसका पता लगाना और उसको पकड़ना।
1: या और हमारे जो बेसिकली कम्युनिकेशंस, इंटेलिजेंस का बेस इज कम्युनिकेशन।
0: ओके।
1: वहां से खबर आती रहे और यहां से खबर ना जाए। बाकी सारी दुनिया इसके अराउंड बनी हुई है। ये दो पिलर हैं।
0: ये दो पिलर हैं।
1: सो अपना अपना रोल सब प्ले करते हैं।

0: कोई अगर इंट्रूडर है
1: हाँ जी,
0: तो उसका पता लगाना और उसको पकड़ना।
1: या और हमारे जो बेसिकली कम्युनिकेशंस, इंटेलिजेंस का बेस इज कम्युनिकेशन, वहां से खबर आती रहे और यहां से खबर ना जाए, बाकी सारी दुनिया इसके अराउंड बनी हुई है। ये दो पिलर हैं,
0: ये दो पिलर हैं।
1: सो अपना अपना रोल सब प्ले करते हैं। तो उसमें मैंने मैंने स्पेशलाइजेशन थी मेरी कम्युनिकेशंस की,
0: जी
1: स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन की, जो अभी मैं पढ़ाता हूँ और फौज छोड़ने के बाद तब से वही करते हैं
0: जी। तो सर इसमें जो जो साइबर सेल का भी जो रोल रहता है, वो भी आपने सेटअप किया, उसमें भी आप शामिल रहे।
1: तो 2001-2002 में जब नया नया इंटरनेट आना शुरू हुआ था, तो सबको समझ आया था कि इंटरनेट से कम्युनिकेशन अब होगा।
0: ओके, ये वो जमाने की बात है।
1: चिट्ठी फोन पे चल रहा था सारा
0: जी,
1: काम।
0: जी जी।
1: तो उस टाइम देश का, आर्मी का रादर पहला साइबर सेल पुणे में मैंने सेटअप करा था। मैंने एक दो कोर्स करे थे, स्पेशली कोर्स करवाए साइबर इन्वेस्टिगेशन के, एथिकल हैकिंग के। तो हमने समझा कि ये कैसे, तो उससे काफी आर्मी है, आर्मी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो भी चीजें टेक्नोलॉजी नहीं आती है पहले पकड़ने की कोशिश करती है, ताकि हमें एक स्टेप आगे रहे। तो फिर हमने साइबर सेल, साइबर पॉलिसी, इस पर काफी काम किया।
0: अच्छा,
1: तो वो आज तक चल रहा है और काफी, अब तो बहुत डेवलप्ड है, पूरी डोमेन है।
0: बिल्कुल,
1: तो उस टाइम तो नया नया
0: था, तो जाहिर है टफ भी रहा होगा उस टाइम पर, उसको सब मतलब स्ट्रीमलाइन करना, उसको एस्टैब्लिश करना,
1: समझने में टाइम लगता था,
0: समझने में टाइम
1: कैसे होता है
0: जी। तो सर अभी ये सब चीजें तो हो गई आपकी।
1: ये वो वाला जमाना था शायद जब आप किसी से ईमेल मांगते थे, वो ईमेल के साथ पासवर्ड देता था।
0: अच्छा,
1: मैं सच बता रहा हूँ, तो लोगों ने कहा पासवर्ड क्यों दे रखे था, फिर वो चेक कैसे करेगा।
0: अच्छा,
1: मतलब धीरे धीरे समझ आया
0: कि भाई ये जो साइबर है ये किस तरह से काम करता है और इसमें कैसे सिक्योर रह सकते हैं। सर इन सब चीजों के साथ साथ आप जो हैं ऑथर भी हैं, आपने किताब लिखी है कुपवाड़ा कोड्स, और इसके बारे में जरूर बताइए। इतना सब आपने किया, आप एक डायरिंग आर्मी ऑफिसर, इंटेलिजेंस पर आपने काम किया, काउंटर टेररिज्म पर आपने काम किया, आपको सेना मेडल से और दूसरे अवार्ड से भी सम्मानित किया गया, आपको पीएम मोदी के मिशन इनोवेशन के नेशनल चैंपियन के तौर पर भी आपको सम्मानित किया गया, अब आप ऑथर भी बन गए।
1: जी, तो ये अभी मैंने एक साल पहले लिखी थी। तो अपने सारे एक्सपीरियंसेस, कुछ ऑपरेशंस को इकट्ठा करके मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी है, गोरखा गैरिसन।
0: अच्छा,
1: जिसमें गोरखा यूनिट और कुछ इंटेलिजेंस वाले जम्मू कश्मीर में ISI और टेररिस्ट को ढूंढ रहे हैं।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये एक स्टोरी है,
1: ये एक पूरी ये सीरीज
0: है,
1: ये फर्स्ट बुक थी उसकी, कुपवाड़ा कोड्स।
0: ओके,
1: जो कि पिछले साल आई थी और हार्पर कॉलेज के साथ है।
0: क्या बात है।
1: तो
0: सर क्या आप चाहेंगे कि इसको मतलब हम OTT प्लेटफॉर्म या कहीं पर देखें, इसको अगर पिक्चराइज किया जाए इसको, फिक्शन।
1: It is a very good story. I hope किसी दिन इस पे कुछ बने।
0: जरूर सर, जरूर, हमारी शुभकामनाएं हैं और हम जरूर चाहेंगे कि इस पर अच्छी आपके एक्सपीरियंसेस के साथ, जो इसमें एक्सपर्टीज के साथ जो आपने लिखी है ये, उसको जरूर पर्दे पर, छोटे पर्दे पर ही सही लेकिन उतारा जाए और हम उसको देख पाएं। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना इतना कीमती समय दिया, इतनी अच्छी आपने बातें करी, इतने अच्छे एक्सपीरियंस आपने हमारे साथ शेयर करे, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना समय निकाला और 80वां देश जो है स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, तो उसकी भी बहुत बहुत तमाम देशवासियों को, हमारे सुनने वालों को, और मेजर मानिक आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद
0: सर। जाते जाते जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जाते जाते मैं सर आपसे अब ये रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि कम से कम एक आपकी पसंद का गाना जरूर चलाऊं जो आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है और आपके दिल से करीब है।
1: तो मैं आपको बताता हूँ, जब NDA में थे तो ये पिक्चर रिलीज हुई थी बॉर्डर
0: जी, बड़ी फेमस,
1: तो उसका गाना था संदेश से आते हैं
0: जी।
1: संडे को दोपहर को हर कमरे में गाना चल रहा था।
0: अच्छा।
1: और इस गाने आई डोंट थिंक फौजी लाइफ, फौजी इमोशंस को इस गाने से अच्छा कोई कैप्चर करता है।
0: क्या बात है सर।
1: तो मैं फर्स्टली आपको थैंक यू, आपके सभी लिसनर्स को जय हिंद।
0: सर लिसनर्स तो हमारे अभी भी जुड़े हुए हैं और मैसेजेस आ रहे हैं।
1: हाँ जी, और स्वतंत्रता दिवस की सबको शुभकामनाएं और थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू सो मच सर आपके आने के लिए। यहां पर मेजर मानिक एम जॉली की पसंद का ये गाना हम छोड़ करके जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ हम सर को जाते जाते जो मैसेज, कुछ एक तो मैं कम से कम पढ़कर सुनाई दूं। सर हैट्स ऑफ ऑल योर एक्सपीरियंसेस शेयरिंग, विश वन लाइफ वी गेट अ चांस टू लिव 1% ऑफ योर लाइफ, प्लीज शेयर योर बुक फ्रॉम USA न्यू जर्सी। ये मैसेज आया है किसी का और इनका नाम मुझे नहीं पता लग पा रहा है, लेकिन इन्होंने सर बड़ा दिल से मैसेज किया है आपको।
1: थैंक यू सो मच, रियली अप्रिशिएट योर मैसेज, जय हिंद आपको भी।
0: और सर ये मैसेज है, सर कैन वी ज्वाइन सीक्रेट सर्विस थ्रू NDA और आफ्टर NDA, ये पूछ रहे हैं सर। समय हालांकि खत्म हो गया लेकिन मैं क्या करूं।
1: हाँ जी, हाँ जी, जरूर जरूर, आप फौज में जाइए और कुछ भी ज्वाइन करें।
0: और सर ये मैसेज है, हेलो सर, NDR एंड आरजे एंड मेजर सर, जय हिंद जय भारत सर, जैसे आप

0: ऐसे महानुभाव की बातें सुनकर यूथ बहुत इंस्पायर होते हैं, उनमें देशभक्ति का जज्बा पैदा होता है। आप सदा स्वस्थ रहें मिसेस धर्म भाटिया। रोहतक से सर ये मैसेज आया सर आपके शहर से।
1: वाह, हमारे शहर से आया
0: जी।
1: भाटिया जी थैंक यू वेरी मच, जय हिंद आपको भी।
0: और सर मेजर साहब को विजय कुमार त्रिचुरपल्ली की ओर से जय हिंद और स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं। सर विजय कुमार है ये।
1: आपको भी विजय जी जय हिंद आपको भी।
0: सर बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़े, ये हमारे लिए खुशनसीबी की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेजर एम जॉली हमारे साथ थे आज, वेटरन इंडियन आर्मी सेना मेडल से सम्मानित। और आप सुन रहे थे संदेश सौदर्श शाहिद के साथ।

अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

राष्ट्र निर्माण में जुटे हर भारतीय का अभिनंदन करते हैं। विक्रम वन की लॉन्चिंग, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य, राष्ट्रमंडल खेलों में 39 पदक और डिजिटल क्रांति, यही है नए भारत की पहचान। फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के हर घर तिरंगा हर दिन तिरंगा अभियान से जुड़ें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

0: இருக்கு. அதுக்குள்ள கரண்ட் பில் 7000 வந்திருக்கு. என் மனைவி ரொம்ப நாளா சோலார் பேனல் போட சொல்றா. அரசு மானியம் கூட தராங்களாம். நான் விசாரிச்ச எல்லாருக்குமே 0 பில் தான் வருது. இந்த தடவை கண்டிப்பா போட வேண்டியதுதான். மின்சாரம் இலவசமா கிடைக்கிறப்ப ஏன் வேணும்னு சொல்லணும். நீங்களும் உடனே போடுங்க. பிரதமரின் சூரிய வீடு இலவச மின்சார திட்டம் இப்போதே PM சூரியகர் .gov.in என்ற இணையதளத்தில் பதிவு செய்யுங்கள்.
1: आइए सुनते हैं फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट श्री नवीन जिंदल का विशेष संदेश.
2: वंदे मातरम. प्यारे देशवासियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. आज हम अमर शहीदों को नमन करते हैं और राष्ट्र निर्माण में जुटे हर भारतीय का अभिनंदन करते हैं. विक्रम 1 की लॉन्चिंग, $5 trillion की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य, राष्ट्रमंडल खेलों में 39 पदक और डिजिटल क्रांति, यही है नए भारत की पहचान. फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के हर घर तिरंगा हर दिन तिरंगा अभियान से जुड़े. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम.

जूझते इन मजबूर और विस्थापित लोगों को निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की असहनीय पीड़ा और दुख से गुजरे लोगों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की। आइए 14 अगस्त 2026 को बंटवारे और उस समय हुई क्रूर हिंसा के शिकार हुए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। अपने आसपास होने वाले साइलेंट मार्च में भागीदारी करते हुए उनकी याद में एक मिनट का मौन धारण।

0: आइए सुनते हैं फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट श्री नवीन जिंदल का विशेष संदेश।
1: वंदे मातरम प्यारे देशवासियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

0: शुभकामनाएं। आज हम अमर शहीदों को नमन करते हैं और राष्ट्र निर्माण में जुटे हर भारतीय का अभिनंदन करते हैं। विक्रम वन की लॉन्चिंग, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य, राष्ट्रमंडल खेलों में 39 पदक और डिजिटल क्रांति, यही है नए भारत की पहचान। फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के हर घर तिरंगा हर दिन तिरंगा अभियान से जुड़ें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: நேர்களே, விளம்பரத்தை தொடர்ந்து மாநில செய்திகள்.

0: தளத்தில் பதிவு செய்யுங்கள்.
1: आइए सुनते हैं फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट श्री नवीन जिंदल का विशेष संदेश.
2: वंदे मातरम. प्यारे देशवासियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. आज हम अमर शहीदों को नमन करते हैं और राष्ट्र निर्माण में जुटे हर भारतीय का अभिनंदन करते हैं. विक्रम वन की लॉन्चिंग, $5 trillion की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य, राष्ट्रमंडल खेलों में 39 पदक और डिजिटल क्रांति, यही है नए भारत की पहचान. फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के हर घर तिरंगा हर दिन तिरंगा अभियान से जुड़े. जय हिंद, जय भारत, வந்தே மாத்திரம்.
3: நேயர்களே, ராம் தங்கநகை மாளிகையின் சூழறிவும் நாளை காலை 6:55 கேட்கலாம்.
4: ஆயிரம் கைகள் மர

0: திருவிதி புதுச்சேரி.
1: आइए सुनते हैं फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट श्री नवीन जिंदल का विशेष संदेश.
2: वंदे मातरम. प्यारे देशवासियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. आज हम अमर शहीदों को नमन करते हैं और राष्ट्र निर्माण में जुटे हर भारतीय का अभिनंदन करते हैं. विक्रम वन की लॉन्चिंग, $5 trillion की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य, राष्ट्रमंडल खेलों में 39 पदक और डिजिटल क्रांति, यही है नए भारत की पहचान. फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के हर घर तिरंगा हर दिन तिरंगा अभियान से जुड़े. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम.

0: आइए सुनते हैं फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट श्री नवीन जिंदल का विशेष संदेश।
1: वंदे मातरम, प्यारे देशवासियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम अमर शहीदों को नमन करते हैं और राष्ट्र निर्माण में जुटे हर भारतीय का अभिनंदन करते हैं। विक्रम वन की लॉन्चिंग, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य, राष्ट्रमंडल खेलों में 39 पदक और डिजिटल क्रांति, यही है नए भारत की पहचान। फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के हर घर तिरंगा, हर दिन तिरंगा अभियान से जुड़ें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
2: என்னப்பா ஹம்மிங்லாம் ரொம்ப பலமா இருக்கு?
3: டெய்லி நைட் நீங்களும் எஃப்எம் ரெயின்போவை கேளுங்க, நீங்களும் இதே மாதிரி பாட்டு ரசிச்சு கேப்பீங்க.
2: என்ன சொல்ற நீ? தினைக்கும் நைட்டா?
3: தினமும் இரவு 9:15 முதல் 11 வரை நமது எஃப்எம் ரெயின்போ புதுவை 102.8 தேன் சுந்துதே வானம்.
2: உடனே நானும் டியூன் பண்ணிடுறேன்.
4: கனவே வண்ணம் திரழுது, நினைவு கண்கள் இருளுது, நனவில்
2: உங்கள் எஃப்எம் ரெயின்போ புதுவை 102.8.